0: This is Leica Radio.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: Safo Travel, at all protected. London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
3: Dil ne ye kaha hai dil se
4: bole chudiya.
0: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: Subscribe to the Leica Radio YouTube channel by searching Leica Radio UK.

होए मने सुत होवे मन बुद्ध मने सगल पौन की शुद्ध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने मार्ग ठाक ना पाए मने पत्स्यों प्रगट जाए मने मग ना चले पंथ मने धर्म से ती संबंध।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: ये है Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
1: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागस एंड सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasun.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
2: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी, सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
4: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
0: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन.
5: खींचे दिखाओ
6: ये. तुम्हें ढंग की फोटो क्यों नहीं खींच सकते?
5: कहीं हाथ कटे हैं तो कहीं पैर, और इसमें तो मैं लग ही नहीं रही हूँ, इतनी मोटी लग रही हूँ.
7: थमाल विद पति पत्नी और पंगा जल्द
0: ओनली ऑन कलर्स टीवी.

0: लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में आ गले लग जा फिल्म से था ये गाना, जिसमें राहुल देव बर्मन का म्यूजिक और मनमोहन देसाई की फिल्म, और उससे पहले बप्पी लहरी ने धूम मचाई थी डिस्को डांसर फिल्म के गीत बनाकर, और इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। आज इन्हीं दो गीतों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, और आप सबको बताते चलें कि ये है आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स, और मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक, और चाहूंगी आप भी दोपहर के एक बजे तक मेरा साथ देते रहिए। आपके मैसेजेस मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, तो हम भी उन्हें जरूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
2: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96, एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
4: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
5: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
6: Dubai is the place. 11,
5: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
7: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
8: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
9: The wait is finally over.
10: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
9: Mirzapur is coming to the big screen.
11: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
9: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
12: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, King of Mirzapur.
9: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya.

0: छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है ये बताना भी नहीं आता। ये खूबसूरत सा रोमांटिक गाना जिसे लिया था मैंने फिल्म बाजीगर से, जिसमें अनु मलिक का म्यूजिक था, ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ नितिन चंद्रा जी की वाइफ ममता वलानी जी को। नितिन चंद्रा जी का मैसेज आया है और आपने बताया है कि आज उनकी वाइफ ममता वलानी जी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, तो इस गाने से अच्छा और कौन सा गीत होगा। आपकी ओर से ये गाना आपकी वाइफ ममता जी को जाता है। और इसके अलावा रुतुन हिमानी भी आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां भिजवा रहे हैं। तो पूरे परिवार की ओर से ममता जी एंड ऑफ कोर्स नितिन चंद्रा जी की ओर से और हमारी ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां, हैप्पी बर्थडे।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
2: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
0: तो लीजिए, आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं और प्रीति कहती हैं कि हमें आता है आपको प्यार जताना और खुलकर आपको प्यार करना। क्या बात है प्रीति, ये आपका प्यार ही है, आपका आप हमेशा मेरा साथ देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यही कहना है संध्या भाव सर, आपका स्वागत है शो में। दिनेश पोपट जी कहते हैं मुझे विनोद राठौड़ की आवाज में ये गाना पसंद है। तो आपको बता दूं कि ये गाना दो आवाजों में रिकॉर्ड किया गया था, विनोद राठौड़ और पंकज उधास। आज मैंने आपको पंकज उधास वाला वर्जन सुनाया है, लेकिन आई थिंक फिल्म में विनोद राठौड़ वाला वर्जन है। सो आपको ये गीत डेडिकेट करते हैं। आपके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश जी, भारत इंदौर से स्वागत है आपका भी। इसके अलावा महेंद्र बजारिया जी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, आपको हैप्पी संडे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। हैरो से दिव्या जी हमारे साथ है, गुरुदेव गांजा क्या बात है, कहते हैं मेरा मन पसंद ऋतु शर्मा शो और लाइका गोल्ड। ओहो, इस तरह की बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू गुरुदेव आपके मैसेज के लिए। थैंक यू राजेंद्र राज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मालती जी, कहती हैं आपने तो मेरा दिन बना दिया, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। एक्चुअली ये मैंने आपसे कहा था और आपको ये गाना भी पसंद है, तो चलिए ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं। आपके साथ साथ हमारे साथ है अनिल सोनी जी, वियाना से वंदना गुट का प्रोग्राम सुन रही है। वजाहत जी एलेक्सा पर हमें सुन रहे हैं, कहते हैं नाइस शो एंड सॉन्ग्स एज ऑलवेज, क्या बात है। थैंक यू आपके इस मैसेज के लिए। थैंक यू हंसा जी, रोजी रजीना, बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। शेखर जी, रोशनी जी, हिमांशु पटेल, तोची जी एंड ऑफकोर्स हमारे विजय गुडूरी जी, आज का विचार आपने आज शेयर किया है। कहते हैं समय हर किसी को मौका देता है, लेकिन उस मौके का परिणाम हमारी सोच और हमारा कर्म तय करते हैं। बिल्कुल 100% सच बात। और आज आप थोड़े टायर्ड हैं क्योंकि कल टेंपल गए थे, और टेंपल में तो देर हो ही जाती है जब जन्माष्टमी होती है, क्योंकि भगवान रात को 12 बजे ही तो जन्मे थे। तो रिलैक्स कीजिए, संडे का दिन है और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे गाने आपको सुनवाए। जासू जी स्वागत है आपका, भरत गंगाराम जी, अर्जुन जी एंड ऑफकोर्स हमारे शबीर जी, आपने चार लाइनें लिखकर भेजी हैं। कहते हैं सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चाय के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती, और आपकी याद के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। क्या बात है, क्या खूबसूरत लाइन लगी है। तो चलिए मैं भी आपको एक खूबसूरत गाना सुनवा ही देती हूँ।
1: ये है
3: लाइका रेडियो
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: इस फिल्म में ये गाना दो बार है, एक बार किशोर दा की आवाज में जिसे अमिताभ बच्चन गाते हैं, और दूसरी बार लता जी की आवाज में जो मौसमी चैटर्जी पर पिक्चराइज किया जाता है। और दरअसल मुझे लता जी वाला वर्जन ज्यादा पसंद है, और यही कहना है हमारी प्रज्ञा का। कहती है मुझे भी लता जी वाला वर्जन ज्यादा पसंद है, क्योंकि वो थोड़ा फास्ट है और इस गाने में बहुत प्यारी भी लग रही है छोटी सी मौसमी चैटर्जी। और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो कभी टेलीविजन पर मिल जाए तो देखेगा, क्योंकि आई थिंक एक चैनल है जो पुरानी ही फिल्में दिखाता है, जिस पर 70s, 60s, 80s की फिल्में आती हैं और 90s की भी। तो कभी कभी मेरी पसंद की कोई फिल्म आती होती है तो मैं उसे देखने लगती हूँ। ये फिल्म अच्छी है, मैंने देखी है। और हमारे नितिन चंद्र जी का कहना है कि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही प्यारा सा गीत मेरी वाइफ को डेडिकेट किया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। तो चलिए, आप खुश हुए, मैं ये खुश हुई जानकर। और इसके अलावा मालती जी, थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू दिव्या जी, रोशनी जी, आंटी जी और दीपक पटेल जी, एच एंड से आपने बड़ा सुंदर मैसेज लिखा है जिसे मैं जरूर पढ़ूंगी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: तो आपने लिखा है कि जय श्री कृष्णा ऋतु, आपकी मम्मी ने जरूर आपके मुंह में हनी डाला होगा जब आप जन्मी होंगी। यू आर ए बोर्न शो प्रेजेंटर विद faultless delivery and what sweetness, thank god for giving us you। क्या बात है, इतनी सुंदर बातें आप लोग कैसे सोच लेते हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने लिखा है और आपने मेरा दिल भी खुश कर दिया है ये बात कहकर। और आपने मुझे मेरी माँ की भी याद दिला दी है कि जब मैं जन्मी होंगी उनकी गोद में होंगी। वाह, कितना सुंदर सीन है। सो थैंक यू दीपक जी पुरानी याद दिलाने के लिए और आपके इस प्यारे से मैसेज के लिए। आप साथ दे रहे हैं जानकर मुझे बहुत खुशी है। इनफैक्ट अगला जो गाना है वो आपको डेडिकेट करते हैं, रफी साहब की आवाज में है। और उसके अलावा जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं सभी का धन्यवाद।
1: Across the Leica Radio Network, this is Ritu Sharma. Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: So, अगर आप घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज इट ऑल प्रोटेक्टेड।

0: क्या खूबसूरत गाना है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। और इस गाने में आशा जी के नखरे, हाय हाय हाय, क्या कहना है उसका। और हमारे विजय जी का कहना है कि इस फिल्म के सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए ये गाना भी हमने आपको डेडिकेट किया। और इसके अलावा संध्या भावसर भी कहती है, ऋतु दिल खुश हो गया, क्या बात है, आज मेरा भी दिल खुश है। इसके अलावा शेखर आनंद जी आपका मैसेज मिला है, और फरीदा जी आज आपने तो कमाल ही कर दिया। लिखती है लाइका गोल्ड की तारीफ में है ये लाइनें, जरा ध्यान से सुनिए। फरीदा जी लिखती है, या अली मदद ऋतु, माय एंगर कंट्रोल लाइका गोल्ड, माय वरी कंट्रोल लाइका गोल्ड, माय टाइटनेस कंट्रोल लाइका गोल्ड, माय हैप्पीनेस इज लाइका गोल्ड, एंड माय ऑल डे हैप्पीनेस इज ओनली लाइका गोल्ड। क्या बात है, इतनी तारीफ सुनकर आज लाइका गोल्ड का 2 किलो वजन तो जरूर बढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मैसेज पढ़ लेते हैं। और ये मैसेज आया है ऑल द वे फ्रॉम स्वीडन, जहां पर मनिका और तेजस प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो मनिका एंड तेजस, आपका मैसेज पढ़कर बहुत खुशी हुई, थैंक यू, वेलकम टू द शो। और आपने लिखा है कि स्वीडन में भी बैठकर दिल हिंदुस्तान से जुड़ जाता है जब लाइका गोल्ड पर ऋतु शर्मा की आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, आपके मुंह से ये तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और लिखते हैं कि उनकी आवाज में ऐसा अपनापन है कि दूर रहकर भी लगता है कोई अपना पास है। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि स्वीडन से सुनने वाले इस दिल की ये आवाज हमेशा खास रहेगी। क्या बात है, आप भी मेरे लिए बहुत खास हैं। थैंक यू तेजस, थैंक यू मनिका, आई लव यू। और देखते हैं अगला गीत कौन सा है, वो जरूर आपके नाम पर करेंगे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.67 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: The gold rate is 105.35 pounds per gram.
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
2: LEICA Radio.
1: This is LEICA Radio Network, broadcasting in Greater London, the Midlands and Greater Manchester. LEICA Radio.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV Geo Hotstar.

केसी बुकाड़िया की फिल्म जिसमें बप्पी लहरी का म्यूजिक और जिसमें थी खूबसूरत जया प्रदा, जिन्हें केसी बुकाड़िया ने ही अपनी ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन बनाया है, और साथ में थे अमिताभ बच्चन। आपने ये गीत सुना, और उससे पहले राजपूत फिल्म का गाना जिसमें राजेश खन्ना के साथ थी हेमा मालिनी। और इन दोनों गीतों के साथ लीजिए प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू हो गया है, और आप सुन रहे हैं द ऋतु शर्मा शो। और आप सब जानते हैं कि संडे के दिन सेकंड वाले आवर में मैं आपको सुनाती हूँ जोड़ी नंबर वन। और आज की हमारी जोड़ी है देवानंद और साधना। और देवानंद और साधना मैं जानती हूँ हमारे बहुत सारे लिसनर्स के फेवरेट हैं, और इन दोनों ने सिर्फ दो ही फिल्मों में साथ में काम किया है। बताइए क्या कमाल की बात है, थोड़ी और

0: और आपके बेटे मितेश की आज हैप्पी वाली 40th बर्थडे है और पूरा लखानी परिवार मितेश को जन्मदिन की बधाइयां दे रहा है, हैप्पी बर्थडे कह रहा है। तो लीजिए हमारी ओर से भी मितेश आपको हैप्पी 40th बर्थडे और आपके पूरे परिवार का प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। अगला गीत बिल्कुल बर्थडे बॉय के नाम पर करते हैं, जो है हमारे आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। लेकिन उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. Ye hai Laika Radio.
0: आपको बता दें कि प्रोग्राम के इस वाले आवर में एक कंपटीशन भी है। जी हाँ, एक कंपटीशन भी है और उस कंपटीशन में आप क्या जीत पाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी अब से बस थोड़ी ही देर में।
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Aman Threeka, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 PM. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Laika Radio.
3: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
4: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
4: 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danube 11, 11. Danube Properties.
6: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, फोर स्टार होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
7: City Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
8: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
7: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
8: Also explore 2026 cruises
7: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.

0: क्या खूबसूरत गाना है. फिल्म असली नकली से देवानंद और साधना ने इस फिल्म में काम किया था और इस फिल्म में और भी गाने हैं, लेकिन जब भी मैं इस फिल्म के गाने देखती हूँ तो मुझे सबसे ऊपर यही गाना नजर आता है, इसलिए आज प्रोग्राम में इस गाने को ही शामिल किया. और ये था आज के जोड़ी नंबर वन का पहला गाना. दूसरा गीत सुनवाने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ रितेश, आपको ये गीत पसंद था, आपके नाम करते हैं. संध्या भावसर थैंक यू. एंड योगेंद्र जैन हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. जैस्मिन जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब समय है प्रोग्राम में कॉम्पिटिशन का. यस, एक कॉम्पिटिशन है और उसमें आपको क्या मिलने वाला है बताती हूँ ना.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो जोड़ी नंबर वन का दूसरा गीत सुनवाने से पहले मैं आपको कंपटीशन के बारे में बता देती हूँ. ये कंपटीशन आपके लिए लाए हैं लाइक अ रेडियो नेटवर्क विद सनातन इवेंट्स, और जिसमें हम आपको देने जा रहे हैं 2 tickets टू द स्टेज स्पेक्टिकल दिवाली स्टोरी विच विल बी हेल्ड एट ओवो अरीना वैमली ऑन संडे 27th September. स्टूडेंट प्री शो पहले होगा जो 5 बजे से 5:45 तक होगा एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 टू 9:30 PM. और अगर आप इस दिवाली स्टोरी के 2 tickets जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड दिवाली और उसके बाद आपको सारे डिटेल्स, अपना नाम लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दीजिए, बिल्कुल सही सही. और हाँ, अगर आप इस इवेंट में जा सकते हैं तभी पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है. तो ये काम आपको करना है, फटाफट कर दीजिए. और अगर आप आज विन हो जाते हैं, विनर बन जाते हैं, तो चिंता की बात ही नहीं है, फ्री में आप इस शो को देखने जा सकते हैं. और अगर नहीं भी बनते हैं विनर तो फिकर नॉट, आप टिकट्स खरीद सकते हैं diwalistory.com पर जाकर. और जो विनर होंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आज आप इस कॉम्पिटिशन के विनर बनते हैं तो आपको जो टिकट्स हैं वो आपको वाया AXS ऐप के थ्रू भेजे जाएंगे, इसलिए आपको AXS ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस हमें देना होगा, ठीक है. टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी. तो जो जो मैंने आपसे मांगा है फटाफट भेज दीजिए हमारे इस नंबर पर.
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
0: और इस वाले आवर के एंड में मैं बताऊंगी कि कौन बने हैं विनर जिन्हें मिलते हैं 2 tickets दिवाली स्टोरी के. और अब शुरुआते हैं आपको आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना.
1: ये है Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था ये गाना और जयदेव ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया था। हमारी आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना। और इस गाने को सुनकर भी आपके बहुत मैसेज आए। संध्या कहती है अभी नहीं ऋतु, अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो बहुत सारा समय बाकी है। लेकिन उससे पहले तलत शहनवाज जी, आपको गीत पसंद आए, शो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। इसके अलावा अनिल सोनी जी वियाना में सुन रहे हैं और कहते हैं ऋतु देवानंद एक ऐसा एक्टर था जिसने मैक्सिमम हीरोइन के साथ काम किया। सच्ची में मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ऐसा कौन सा हीरो है जिसने मैक्सिमम हीरोइंस के साथ काम किया। और आप कह रहे हैं कि देवानंद, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि वो देवानंद ही थे या कोई और। आप भी सोचिए, बताइए, ये बात अच्छी है, सोचने लायक है। लेकिन थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिशन चल रहा है और इस वाले आवर के एंड में बताने वाली हूँ कि विनर कौन बने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और है जो आपको बताना चाहती हूँ।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट यू बाय NKN मीडिया इज बैक। कल भी था और आज भी है एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। आप जा सकते हैं, वहां पर सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं, अरबाज खान कल आए थे, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाकिरी, उनसे मिल सकते हैं। फ्री एंट्री है, रजिस्टर कीजिए nknpropertyexpo.com पर। और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: दिस इज रितु शर्मा।
3: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू
4: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: और अगला गीत सुनाने से पहले आपको फिर से याद दिला दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इस बार का टाइटल है मोहम्मद वकील स्पेशल, जिसे होस्ट किया है रवि शर्मा ने। और आप इसे सुन सकते हैं Spotify पर, YouTube, Amazon, Apple एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर।
4: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. Leica Radio.
5: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
6: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
6: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
9: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
10: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy. Powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
12: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
13: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rifco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Leica Radio.
12: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
14: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
10: On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
15: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे जमाना हमारी इज्जत करे और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से को रोक बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है
10: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के इस गाने के बाद चलिए एक खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं।
1: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM।
0: तो चलिए आपको बताते चले कि ये संदेश जो है आपके लिए लाए हैं मर्सिडीज बैंस बैंस और हमारे लाइक अ रेडियो नेटवर्क की ओर से है। ये कैसी जानकारी है जो शायद आपको थोड़ा चौंका सकती है। यूके में गाड़ी खराब होने की वजह से बिजनेस को हर वैन पर औसतन हर रोज 1172 पाउंड्स का नुकसान होता है और इसीलिए मर्सिडीज बैंस बैंस आपके लिए लाया है अप टाइम प्रॉमिस, रोड साइड असिस्टेंट और सर्विस के लिए अधिक समय से लेकर वाहन की रियल टाइम जांच और खराबियों की तुरंत पहचान और भी बहुत कुछ उनके पास है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और कई डिजाइन किए गए फायदे भी है। मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ है, आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में और जानें। आपको बता दें कि आप mvvans.co.uk/uptimepromise पर जाकर अधिक जानकारी पा सकते हैं।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 376 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Radio across the Midlands. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: The gold rate is 105.35 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester or call 0116 266 4278. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. This is Leica Radio.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच, मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49, सुहाना खमन ठोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99, टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96, एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99 पीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 केजी जी सिर्फ 10.99।
6: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोलॉट सेल लिस्टर LE54UN।
7: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
8: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
7: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
8: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
7: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
8: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 8574-8410।
10: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
11: लेस्टर नवरात्रि ની ધમાકેદાર રાતો માટે થઈ જાવ રેડી। KDR Events and Beach Promotions proudly presents Navratri Festival 2026 11th to 20th October live from India। Garba, Dandiya, music and a full on festive vibes every night from 7 PM at Avanti Field School, Leicester। Tickets just £5 the start। Book your tickets now on Ticket Source or call BJ 0795747730। Radio Partner Leica Radio।
12: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: Creative's team events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
15: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
16: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio. Leica Radio in Birmingham is a part of Leica, London's number one Asian commercial radio group.
17: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: लीजिए लता जी और रफी साहब की आवाज में ये गाना आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। ये गाना पसंद है तेजस एंड मनिका आपको, आपके नाम करते हैं, स्वीडन में आप हमें सुन रहे हैं। और इसके अलावा अरुणा जी कहती हैं ऋतु मेरे नाम कीजिए गाना, शीतल कहती हैं व्हाट ए क्लासिक सॉन्ग, एंड इसके अलावा राजेंद्र सिंह कालरा आपको ये गीत पसंद है, विजय गुरुजी जी आपने भी इस गीत को पसंद किया है, सो थैंक यू सभी ने इस गीत को पसंद किया है। और अब समय आ गया है कि मैं आपको बता दूं कि आज के कॉम्पिटिशन के विनर कौन बने हैं। और जो दिवाली स्टोरी देखने जा रहे हैं, आज का कॉम्पिटिशन जिन्होंने जीता है उनका नाम है मनोहर नेहरा। आप बनते हैं आज के इस कॉम्पिटिशन के विनर और आपको मिलते हैं 2 टिकट्स बिल्कुल फ्री में। लेकिन आप अपने फ़ोन पर AXS ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको जो टिकट्स हैं वो ईमेल के थ्रू इसी ऐप पर मिलेंगे। तो ये काम आप फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब हम अनाउंस करते हैं सारी बातें तब आप शायद भूल जाते हैं या मिस करते हैं, फिर बाद में आप हमसे पूछते हैं कि टिकट्स नहीं मिले, और हमारे लिए पीछे जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिशन्स जो होते रहते हैं। तो ध्यान से AXS को ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और टिकट्स आपको इसी के थ्रू मिलेंगे। और अगर आप विनर नहीं बने हैं कोई और जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आप diwalistory.com पर जाकर टिकट्स बुक करा सकते हैं।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो अक्रॉस द मिडलैंड्स।
0: और लीजिए शारदा जी की आवाज में ये गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार सुनवाऊंगी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स और खेलेंगे थ्री वर्स गेम भी। एंड मनोहर नेहरा वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस।

0: किशोर दा और गुम लता जी की आवाजों में ये गाना फिल्म आक्रमण से लिया था, जो राकेश रोशन पर पिक्चराइज था। और आपको बता दें कि आज 6 सितंबर को राकेश रोशन जी की बर्थडे है। ही इज 77 टुडे। 1949 में बॉर्न राकेश रोशन को कौन नहीं जानता। कल उन्हें हमने यादें में भी याद किया था और उनके बहुत सारे गाने भी सुनवाए थे। ये गाने आप सबने पसंद किए हैं, थैंक यू। प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है और अब समय है आज के 3 वर्ड्स गेम का। तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं, जिन्हें मैं हमेशा की तरह किसी बॉलीवुड के गीत से उठाती हूँ, और आज का गाना बहुत ही पॉपुलर है और आप सबको पता है। तो पहला वर्ड है आसमां, दूसरा वर्ड है मेहरबान और तीसरा है जमी। 1966 में आई थी ये फिल्म। आरडी बर्मन का म्यूजिक है और मोहम्मद रफी की आवाज है। बताइए जरा कौन सा है ये गाना। पहला वर्ड है आसमां, दूसरा वर्ड है मेहरबान और तीसरा है जमी। 1966 की फिल्म, आरडी बर्मन का म्यूजिक, मोहम्मद रफी की आवाज। अगर आपको ये गीत पता है तो भिजवाइए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404-793-719.
0: I repeat once again, पहला वर्ड है आसमां, दूसरा वर्ड है मेहरबान और तीसरा है जमी। जमी, I should say जमी। 1966 की फिल्म है, आरडी बर्मन का म्यूजिक है, मोहम्मद रफी की आवाज है। कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज 1 pound आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.com. Leica Radio.
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 99p से शुरू। और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
4: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइस्टन स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
5: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras, we've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
6: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place.
7: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
8: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
9: Yeah.
10: लेस्टर ना लिटिल गरबा स्टार्स तैयार थे जाओ। KDR इवेंट्स एंड बीच प्रमोशन प्राउडली प्रेजेंट्स किड्स गरबा 2026 विद लाइव फ्रॉम इंडिया सैटरडे 17 अक्टूबर बपोरे 1 से 4 एट अवंती फील्ड स्कूल।

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में मर्यादा फिल्म से था ये गाना, और इस गाने में नाच रही थी माला सिन्हा, और आप जानते हैं माला सिन्हा ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और अब शुरुआत करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज बहुत सारे लोगों ने आंसर्स तो दिए हैं लेकिन सही आंसर्स कुछ ही लोगों के हैं, और जिनके सही आंसर्स हैं उनके नाम बताती चलूं। राजेंद्र सिंह कालराम, महेंद्र बाजारिया जी, उल्लाश दिव्या जी हैरो से, विजय गुडूरी जी, मालती जी, नरेंद्र पटेल, नीलेश तन्ना, निम्मी जी, कुकी, जगजीत संगर, गीता जोशी, तोची, अनूप चतुर्वेदी। इनके अलावा जिन भी लोगों ने जवाब दिए हैं वो फिर से सोचें और बताएं कि गाना कौन सा है, क्योंकि फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। जरा ईयर को, यानी कि जो साल है, वर्ष है, उसे ध्यान रखिए। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि आजकल एक फिल्म भारत में बड़ी चर्चाओं में है जिसका नाम है हनुमान अंश। आपने भी उसके बारे में सुना होगा, बहुत हिट हो रही है, और मुझे लगता है क्योंकि वो इंडिया में इतनी ज्यादा हिट हो गई है तो यहाँ पर भी वो रिलीज होने वाली है, और या तो फ्राइडे रिलीज हो गई है या मे बी कमिंग फ्राइडे होगी। लेकिन मेरा प्लान है देखने जाने का, क्योंकि भारत में उस फिल्म को पहले तो स्क्रीन ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब वो फिल्म लोगों को पसंद आई तो उसने बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया, अच्छा बिजनेस कर रही है और लोग बहुत देखने जा रहे हैं। तो अगर आपको भी मौका मिले देखकर आइए और हमें बताइए कि वो फिल्म आपको कैसी लगी। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। ये है Like a Radio Feel Good Track brought to you by Derry Valley. Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का ये पहला गाना था, एस टी बर्मन का म्यूजिक और फिल्म का नाम तीन देवियां। एंड थैंक यू हरीश छाबड़ा जी आपके बहुत ही प्यारे से मैसेज के लिए। और अब आपको बताते चलें कि यस, हमारे महेंद्र जी ने बताया है कि हनुमान अंश फिल्म जो है वो 11 सितंबर को रिलीज हो रही है और भारत में धूम मचा रही है, तो मेरा तो प्लान है उसे देखने जाने का। तो आप भी देखाइए अगर आपके पास समय हो, और फिर हम अगले हफ्ते उसके बारे में जरूर बात करेंगे। एंड उषा खोड़ा जी एंड हमारी तृप्ति जी, आपका आंसर नहीं, उषा खोड़ा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, और बाकी जिन्होंने जो जवाब दिए हैं वो इतना सही नहीं है। लगता है आज आप सबको गूगल ने घुमा दिया है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आज से भाई बिग बॉस 20 शुरू हो रहा है।
1: The Ritu Sharma Show on Leica Radio.
0: तो मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस को फॉलो करती हूँ, और बहुत सारे साथी आज जरूर इंतजार कर रहे होंगे शाम का। और इस बार भी बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं सलमान खान। ये दिखाया जाएगा हर रोज 9:00 यानी कि 9:30 कलर्स टीवी पर और जियो स्टार पर आज से ही। और फॉर द फर्स्ट टाइम जियो स्टार विल स्ट्रीम एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 House. और जियो स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन स्काई टीवी।
1: दिस इज रितु शर्मा।
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: चलिए सुनाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।

0: ब्लफ मास्टर से लिया था ये गाना, जो था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और अब आपको सुनवाने वाली हूँ आज के थ्री वर्स गेम वाला गीत, जिससे उषा खोड़ा जी एंड तृप्ति जी आपने, नहीं उषा खोड़ा जी आपने सही पहचाना है, बाकी बहुत सारे लोगों को आज AI कहूँ गूगल कहूँ ने घुमा दिया है। और आप सब जब भी गीत पहचानने की कोशिश करते हैं तो ईयर को हमेशा ध्यान में रखा कीजिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ये तो हर दूसरे गाने में होते ही हैं, लेकिन जो साल होता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है और जो सिंगर होता है, उससे इजी हो जाता है गीत को पहचानना। सो बस थोड़ी ही देर में सुनवाने वाली हूँ आज के थ्री वर्स गेम वाला गाना, जिसे लिया था मैंने फिल्म तीसरी मंजिल से, जो बजेगा अब से बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथ हॉल ट्रैवल को कांटेक्ट कीजिए 0208-574-8410 पर। साउथ हॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: And thank you Parhit Kalia ji, thank you आपके इस beautiful message के लिए, और आपने शो को पसंद किया है और हमेशा करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7pm. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860-280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.

तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। आशा भोसले एंड किशोरदा की आवाजें आपने सुनी है ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर। जहां भी बैठे सुन रहे हैं, लंदन में हैं, आसपास के इलाकों में हैं, मैनचेस्टर में सुन रहे हैं, मिडलैंड्स में सुन रहे हैं, बर्मिंघम में सुन रहे हैं, लेस्टर में सुन रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ वीकेंड अच्छा गुजर रहा है। क्यों नहीं, हम जो हैं आपके साथ। जी हाँ, आपका मनोरंजन सुबह सुबह शुरू हो जाए। पहले तो वैसे 24 घंटे होते हैं, लेकिन सुबह सुबह वीकेंड पे आते हैं पहले दीप राजा, फिर रितु शर्मा, देन अनुराग और फिर सरिता की बारी आती है। तो मैं वेरी मच हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आप ही के अपने रेडियो पर। और मुझे नहीं मालूम किस जरिए से आप सुन रहे हैं, किस जरिए से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आर यू लिसनिंग ऑन AM फ्रीक्वेंसी 1035 पे सुन रहे हैं, DAB पे, अलेक्सा पे, गूगल होम एंड likeagold.com, जिस भी जरिए को आपने चुना है आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है। और उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये आवाज आप सब तक पहुँच रही है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहे मेरे कहे बगैर। आपके इतने सारे मैसेजेस ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं हमारे व्हाट्सएप पर, और थैंक यू सो मच कि बड़े प्यार से आप सुनते हैं, इंजॉय करते हैं प्रोग्राम। राइट, बैक टू बैक दो गाने सुने। पहला गीत मैंने चुना था फिल्म कुछ कुछ होता है, इस फिल्म से क्यों चुना था ये भी बताऊंगी जरूर। बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर जी, एंड इस फिल्म का संगीत दिया था जतिन ललित ने। फिल्म में काम किया था शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान एंड सना साईद, अनुपम खेर के अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट थे। नीलम की भी एक छोटी सी गेस्ट अपियरेंस थी। और ये फिल्म 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज हुई थी, लेकिन इसलिए नहीं इसको शामिल किया क्योंकि ये रिलीज़ अक्टूबर में हुई, वो सिलसिला चलेगा सेकेंड एंड थर्ड आवर में। और दूसरा गीत मैंने चुना था फिल्म दोस्ताना से, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला जी ने, सलीम जावेद साहब ने इसकी स्टोरी लिखी थी, प्रोड्यूस बाय यश जौहर। फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा ने, और भी बहुत सारे कलाकार थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और जबरदस्त गीत आपने सुना, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। बहुत अच्छी आवाजें किशोरदा एंड आशा भोसले जी की। अब ये दोनों गाने जो थे ये बहुत पॉपुलर हुए थे, इनफैक्ट फिल्म ही बहुत पॉपुलर हुई थी। और इन दोनों गीतों को चुनने का एक मकसद ये था कि आज हम याद कर रहे हैं प्रोग्राम के इस आवर में करण जौहर जी के पूज्य पिताजी यश जौहर जी को, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। यश जौहर जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने बॉलीवुड की चमक तमक के पीछे रहकर हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाई है। वो कौन है? यश जौहर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की। यश जौहर जी का नाम एक प्रोड्यूसर के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म प्रोडक्शन को अपने

0: and expanded Dharma Productions into one of India's leading production houses. Yash Johar died on 26th of June 2004 in Mumbai when he was 74 years old due to a chest infection while also battling cancer. So, इनकी दो फिल्मों के तो गीत आपने सुन ले जो इन्होंने प्रोड्यूस की थी और भी ऐसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी इन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपना योगदान दिया जिनके गीत मैं ज़रूर शामिल करूंगी क्योंकि ज़्यादातर गीत जो हैं वो 2000 अपवर्ड उन फिल्मों के हैं जिन्हें करण जौहर ने डायरेक्ट किया लेकिन प्रोड्यूस बाय धर्मा प्रोडक्शन और अभी भी वो अपने पापा का ही नाम यूज़ करते हैं. तो कुछ ऐसी फिल्में जिनको उन्होंने असिस्ट किया था उन फिल्मों के भी गीत शामिल रहेंगे. उन्हीं में से अगला गीत मैंने क्यों किया है लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आप तक पहुँचाऊँ. तो मैं आपको जल्दी से चॉइस देती हूँ. जल्दी से बताइए कि आपके दिल के करीब कौन सा गीत है. इस फ्रॉम द फिल्म ज्वेल थीफ. ज्वेल थीफ के सारे गाने बड़े अच्छे थे. होंठों में ऐसी बात वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त गीत. लेकिन मैं इन दो गीतों में से एक गीत प्ले करना चाहती हूँ. आसमां के नीचे और दूसरा है ये दिल न होता बेचारा वो वाला गीत. तो कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है. ए आसमां के नीचे और दूसरा ये दिल न होता बेचारा. अपनी पसंद जल्दी से मुझ तक पहुँचा दीजिए.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी अगर आप State Bank of India के द्वारा पैसे पहुंचाना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी तो काम बड़ा आसान है. आप ब्रांच में जाकर पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं ऑनलाइन और SBI Yono मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसके जरिए भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा रहती हैं. और आज आपके 1 British sterling pound के बदले आपको मिल सकते हैं 127 rupees and 15 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. One performer.
2: Countless personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Babi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का perfect destination. Rakhi और Ganesh Idols अब available हैं सभी Falcon stores पर. Onam संध्या के लिए pre-bookings भी शुरू हो चुकी हैं. Falcon Snacks 300 grams की full range सिर्फ £1.99 each. Mustafa Dehraduni Rice 20 pounds सिर्फ £13.49. Suhana Khaman Thokla 500 grams सिर्फ £1.99 each या 2 for £2.99. Tilda Grand Basmati 20 kg सिर्फ £29.96. S Motiram Namkeen अब सिर्फ 99 piece से शुरू और Herdsman Butter Ghee 20 kg is 10.99.
4: Falcon Cash and Carry 82A Syston Street West Leicester LE12JU and 2A Rollout Cell Leicester LE54UN.
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
6: It's back and it's bigger.
1: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Vam Jewelers.
6: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
1: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803-240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
6: Exclusive charity partner, Go Dharmic.

0: चले।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म ज्वेल थीफ और ज़्यादातर वोट्स इसी गीत को मिले थे. जिन्होंने इस गीत की रिक्वेस्ट की थी मुस्कुरा रहे होंगे कि उनका गीत हमने प्ले कर दिया. थैंक यू सो मच. बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए मैं सबके नाम इंडिविजुअल नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया. यश जौहर जी ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में प्रोड्यूस की जैसे दोस्ताना, दुनिया, अग्निपथ, गुमराह, डुप्लीकेट और बाद में कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ड्रीम्स और एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म गाइड, ज्वेल थीफ इन 1967, प्रेम पुजारी 1970, हरे रामा हरे कृष्णा इन 1971 एंड द जंगल बुक इन 1994 ही वॉज द असिस्टेंट प्रोड्यूसर. तो इसीलिए मैंने ज्वेल थीफ का गीत शामिल किया. और अगला गीत भी बहुत प्यारा है और ये है फ्रॉम द फिल्म प्रेम पुजारी. यू विल लव इट.
1: दिस इज लाइक अ रेडियो. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: Bola jaye phoolon ka shabab usme phir

0: soft gloss, up her stop gloss.
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK.
2: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
3: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: फिल्म गाइड से चुना था मैंने इस गीत को। 1965 में ये फिल्म आई थी और इसके भी असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे यश जौहर जी, जिन्हें आज हमने याद किया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। उम्मीद करती हूँ सभी के सभी गीत आपने पसंद किए जो मैंने प्रोग्राम के इस आवर में शामिल किए। नेक्स्ट आवर में हम राकेश रोशन जी का बर्थडे मनाएंगे।
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

15 minutes after 5 o'clock. मैं सरिता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ. If you have just joined me, तो अभी अभी आपने दो गीत सुने back to back इस आवर के. And पहला गीत मैंने किशन कन्हैया से लिया था, जो कि 1992 की फिल्म थी. आपने देखी थी ये फिल्म? 1992 में आई थी ये फिल्म, किशन कन्हैया, जिसे प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था एंड प्रेजेंट किया था किसने? राकेश रोशन जी ने. और इस फिल्म में काम भी किया था, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर थे इस फिल्म में राकेश रोशन, जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. और दूसरा गीत मैंने चुना था खुदगर्ज फिल्म से, जो 1987 में आई थी, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को एंड डायरेक्ट भी किया था. आज राकेश रोशन अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो हमारी तरफ से उन्हें बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई. और ऐसे दिन उनकी ज़िंदगी में बार बार आए, हज़ार बार आए, खुशियां मनाते रहें. अगर आप भी इनके साथ साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. कोई और खुशी का मौका है तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में. राकेश रोशन का फिल्मी सफ़र किसी रोलर कॉस्टर से कम नहीं है. रोलर कॉस्टर की जो राइड होती है, वैसा ही इनका करियर भी रहा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक एक्टर की थी, और 1970 में फिल्म घर घर की कहानी, याद है आपको, उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ने लगा. आज राकेश रोशन नागराथ इनका सरनेम है. आज ही के दिन 1949 में इनका जन्म हुआ था. इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एक्टर हैं, हु वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स, एंड ही अपीयर्ड इन 84 फिल्म्स इन द 1970s, 80s. लेकिन फिर एज एन एक्टर ही इज़ मोस्टली नोन फॉर हिज सपोर्टिंग रोल्स इन बिग बजट फिल्म्स. लेटर हिज इन्होंने कहा कि मैं अपना डाइवर्ट करता हूँ अपना करियर, और इन्होंने डायरेक्टिंग की तरफ अपना कदम रखा. और इन्होंने ये कहा कि बिगनिंग में कि सभी फिल्में के से होंगी 1987 से लेकर अब तक. और उन्होंने एज ए फिल्म मेकर खुदगर्ज बनाई, खून भरी मांग, ब्यूटीफुल फिल्म थी, किशन कन्हैया, करण अर्जुन का होना प्यार है, एंड उसके बाद कोई मिल गया इन 2003, एंड इट्स उनके उसके जितने भी

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: राकेश रोशन पर पिक्चराइज हुआ था ये गीत और इस फिल्म का नाम था पराया धन। 1971 में आई थी ये फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था राजेंद्र भाटिया जी ने और इसमें बलराज सहनी जी के साथ राकेश रोशन एंड हेमा मालिनी इन लीड रोल थे। उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया और बहुत सी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। और जो गीत अब मेरे साथी सुनना चाहते हैं वो गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। एक दो वोट सिर्फ बी को मिले और बाकी सभी ने कहा कि हमें आंखों आंखों में टाइटल ट्रैक सुनना है। और मनु जी एंड उल्लास जी ने कहा था ये सुनना चाहते हैं दो बातें प्यार भरी। मैं आप तक पहुंचा रही हूँ आंखों आंखों में वाला गाना क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथियों ने उसी गीत की रिक्वेस्ट की है। इनफैक्ट मनु जी ने भी यही गीत सुनना चाहा आंखों आंखों में। निर्मला जी थैंक यू आपका भी, उल्लास जी आप भी यही सुनना चाहते हैं, सभी को ये गाना पसंद है ज़्यादा। तो आइए ये गीत आप तक पहुंचा दें जो मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म आंखों आंखों
0: में। Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: ऐसे बहुत से गीत हैं जो राकेश रोशन जी पर पिक्चराइज हुए और बहुत फेमस भी हुए, पॉपुलर हुए ये गाने. उम्मीद करती हूँ सभी गाने आपको पसंद आ रहे हैं. और अब जरा ये काम भी करिए.
2: This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
1: भी बता दें आपको, सुनील ग्रोवर आ रहे हैं, कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर, लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बले ऑन थर्सडे 29th ऑफ अक्टूबर. एंड लेस्टर में होंगे वो, लेस्टर मैट्योटी अरीना में सैटरडे 31st ऑफ अक्टूबर को. टिकट्स एट AXS एंड इवेंट ब्राइट से आप टिकट ले सकते हैं. एंड ऑल्सो फ्रॉम टिकट मास्टर, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइक अ रेडियो नेटवर्क. और रागासन हमारे कन्फर्म पार्टनरशिप में है विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट LeicaRadio.com.
2: दिस इज Leica Radio अक्रॉस द मिडलैंड. Sarita Sabharwal विद द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन Leica Radio. Leica Extra पॉडकास्ट अपडेट.
1: राइट, बता दें आपको कि इस बारी पॉडकास्ट में है मोहम्मद वकील, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बात करेंगे रवि शर्मा जी से. इन दिस स्पेशल एपिसोड रवि जी सिट्स डाउन विद रिनाउंड आर्टिस्ट मोहम्मद वकील टू एक्सप्लोर द स्टोरी बिहाइंड हिज म्यूजिकल जर्नी. लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk. Leica Radio.
3: लेस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन. राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर. ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं. फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच. मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49. सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99. टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96. एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू. और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg G Sir 1099.
4: Falcon Cash and Carry 82A, Size 10 Street West, Leicester, LE12JU and 2A Rollout Sale, Leicester, LE54UN.
5: Four stars, one stage, one date. Jay's Entertainment presents Bollywood Legends featuring actor Sanjay Kapoor, actor Aftab Shivdasani, playback singer Amantrika, and singer Mayuri Patalia. Sunday the 27th of September at De Montfort Hall, Leicester from 7 p.m. Tickets from £20. Book now at demontforthall.co.uk or call Mr. B on 07860 280655. Exclusive radio partner, Leica Radio.
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
2: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203 963 5757 to arrange your meeting.
10: The wait is finally over.
11: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
10: Mirzapur is coming to the big screen.
12: Gaddi na to virasat se milti hai, na siyasat se.
10: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
13: Agar Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
10: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
14: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Adil ji. Dusra koi nahi khulega.
15: Birmingham, get ready as Surrenderella is back for 2026. Rivco Theatre Company's smash hit Desi Panto returns this summer, and the good news is you can catch it at the Crescent Theatre Birmingham Wednesday the 9th to Saturday the 12th of September and Wednesday the 30th of September to Saturday the 3rd of October. With dance floor bangers by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed Desi Panto fun for all the family. And with tickets from only £15, click rivcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Radio partner Laika Radio.
16: Big Boss mein is baar milega pardaan aur extra jeevan daan. Tab khas tu meri jaan.
5: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house exclusively on Jio Hotstar.
17: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath?
2: Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. It's summer on the Leica Radio Network.

0: फिल्म कामचोर से चुना था मैंने इस गीत को, राकेश रोशन एंड जया प्रदा पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। ये है Leica Radio.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
3: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर मलेशिया और थाईलैंड सेंटोसा आइलैंड बाटू केव्स जेंटिंग हाइलैंड्स बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन फ्लाइट्स फोर स्टार होटल्स इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154 846.

0: आशा भोसले एंड किशोरदा की आवाजों में आपने ये गीत सुना। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। फिल्म का नाम था जख्मी और इस आवर में हमने सभी वो गीत शामिल किए जिनके साथ राकेश रोशन जी का है रिश्ता, चाहे उन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म या डायरेक्ट की या फिर उन्होंने उस फिल्म में एज ए हीरो काम किया, लीड रोल में काम किया। उम्मीद करती हूँ मेरे चुने गीत और बातचीत पसंद आई और राकेश रोशन जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह से वो फिल्में बनाते रहे और अपने बेटे को भी तो उन्होंने लॉन्च किया और वो भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर रहे हैं। चलिए अब न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, फिर अगले आवर में मिलते हैं।
1: Birmingham, Leicestershire, Coventry, Derbyshire, Wolverhampton and Shropshire.
2: This is Leica Radio.
1: Midlands.
3: Top stories this hour. The two US envoys sent to kickstart talks to end Russia's war in Ukraine are feeling upbeat after a weekend of discussions.
4: The president asked Jared and I to come here because this is so important to him. I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here. I want to thank you, President Zelensky, for your hospitality.
3: That's one of them, Steve Witkoff. He and Jared Kushner held talks with Vladimir Putin in Moscow yesterday before getting on a train to Kyiv and having discussions with President Zelensky earlier. They say they hope three-way talks can restart soon. Exit polls suggest Germany's far-right AfD has come first in a regional election in Saxony-Anhalt, but it appears to have fallen just short of the majority needed to become the country's first far-right state government since the Second World War. Up to 4,000 jobs could go at Jaguar Land Rover over the next 2 years. The business secretary says there'll be no taxpayer bailout for the carmaker. A volcano has erupted in Indonesia, causing flight cancellations. Jakarta's international airport is affected, as well as other domestic terminals. Visitors are being told to stay at least 2 miles away from the active crater. In sport, Manchester United have narrowly missed out on a first away win of the season as they were held 2-2 at Everton in the Premier League. The visitors twice had the lead but conceded in stoppage time at Hill Dickinson Stadium. Boss Michael Carrick says it's pretty tough to take.
5: It hurts, you know, because we came here to win and we put ourselves in a good position and to bounce back and to get that goal and so close to the end, 30 seconds to go. We accept it, obviously, and we've got to learn from it because we'll be in these positions again and we need to make the most of it.
3: Hearts are up to second in the Scottish Premiership with a dramatic 2-1 victory at home to Dundee. Edinburgh rivals Hibs couldn't relieve the pressure on boss David Gray with a 2-1 defeat at St Johnstone. And Britain's George Russell has had to settle for second in an eventful Italian F1 Grand Prix. From Sky News, I'm Barry Wood.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Leica Radio Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
0: The मौसम तो बहुत अच्छा है, sunny intervals and gentle breeze चलती रही सारा दिन। London में 26 max रहा and low 17 होगा। कल भी अच्छा मौसम है, बारिश थोड़ी थोड़ी होती रहेगी एंड टेम्परेचर रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस इन लंदन एंड इन सराउंडिंग एरियाज। एंड मैनचेस्टर में कल 20 डिग्री होगा और बारिश की संभावना है। आज तो मौसम अच्छा है, 23 डिग्री सेल्सियस। एंड मिडलैंड्स में भी मौसम अच्छा रहेगा कल, 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी बना रहेगा। अपने दिल का टेम्परेचर ठीक रखिए, बाकी बात छोड़िए।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. This is Leica Radio across the Midlands. Sarita Samawal.
0: प्रोग्राम के लास्ट इन द फाइनल आवर में हमने कदम रखा है। इस आवर में कुछ ही गीत होंगे जो फिल्में आज के दिन रिलीज हुई और कुछ मिले जुले गीत। और इस आवर में हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक में भी बहुत प्यारा माला सिन्हा जी का गीत चुना है। सुनते रहिएगा, साथ दीजिए, बैक टू बैक दो गाने।
1: Leica
2: Radio. Leica Radio.
1: Let's return to the biggest hits back to back. This is Leica Radio, broadcasting across the Midlands on DAB Digital Radio with a refreshing mix of Bollywood classics and latest chart toppers. Download the Leica Radio mobile app and listen wherever you are in the world. Sarita Sabharwal.

0: फिल्म संघर्ष से चुना था मैंने इस गीत को, सोनू निगम एंड श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में गाया हुआ बड़ा ही मीठा सा गाना था और उम्मीद करती हूँ कि इसकी मिठास आप तक भी ज़रूर पहुँची होगी। एंड प्रोग्राम का आगाज़ हुआ इस आवर का दिल का क्या कसूर फिल्म के गीत के साथ, आशा भोसले एंड कुमार सानू की आवाज़ें थी। बैक टू बैक दोनों गीत आपको पसंद आए होंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। आपके मैसेजेस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत लंबी लिस्ट है, हारप्रीत सुन रही हैं वैंकूवर में, मीना लखानी जी, भारती जी, विजय गुदरी जी, निर्मला जी, अरुणा जी, उल्लास इन टोरंटो, अमिता जी, विमल रायन, वत्सला जी एंड तोशी, अमृता जी, तोची पनेसर जी, इंतशाब, मनु जी, रीटा जी, मिसिस शेख आप सुन रही हैं इस्लाम में, महेंद्र बरजारिया जी साउथ हैरो में, एंड आप कौन है रीटा जी, थैंक यू आपका, पूनम पुजारा जी आपका भी धन्यवाद, हर्षदा लंबानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वीना विनी विनोद एंड वरुण जी, संतोषिन हैरो, रमीला जी, अर्जन जी, दिव्या हैरो में, मीना शाह एंड मोहम्मद अयूब चौहान साहब, जैस्मिन जी, हंसा बोरा जी, सलमा इन मेडस्टोन, ओह माय गॉड बहुत लंबी लिस्ट है, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इसी तरह से साथ देते रहिएगा। राइट, अब दो गीत तो आपने सुन लिए बैक टू बैक इस आवर के, अब आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं हमारी माला सिन्हा और इतनी खूबसूरत फिल्मों में उन्होंने काम किया है और पता नहीं चल रहा कि कौन सा गीत आप तक पहुंचाऊं। चलिए, मैंने बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म के दो गीत मैंने क्यों किए हैं, उनमें से एक गीत ही शामिल कर सकती हूं। एक गीत है वो हंस के मिले हमसे हम प्यार समझ बैठे आशा भोसले जी की आवाज़ में, और दूसरा कोई कह दे जमाने से वो वाला गीत। कौन सा गीत आपको ज़्यादा जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। ए वो हंस के मिले हमसे और दूसरा कोई कह दे कौन सा गीत आपको ज्यादा पसंद है जल्दी बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर तो याद है ना, नहीं याद है तो सरिता आपको याद करा देती है, जानती है ना क्या नंबर है।
1: WhatsApp Leica Radio Midlands now on 07404 793 719।
0: So, अगर अपनी पसंद शामिल कराना चाहते हैं तो जल्दी लिखिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए, SBI के जरिए अगर पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। You can go in the branch online और SBI Yono mobile app के जरिए आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। TNC applies और आज आपका 1 British sterling pound can get you up to 127 rupees and 15 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. Sarita Summerwall with the biggest classics on Leica Radio. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Leicester Falcon Cash and Carry Festive Shopping का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फैल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग भी शुरू हो चुकी हैं। फैल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 pounds सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 kg सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 rupees से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
3: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE1 2JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE5 4UN।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
7: No more worries for me or you.
8: Southall Travel. At all protected.
9: Lester na Little Garba Stars taiyar thai jao. KDR Events and Beach Promotion proudly presents Kids Garba 2026 with Live from India. Saturday 17th October, Bapore 1-4 at Avanti Field School, Lester. 1-10 varashna kids mate entry just

0: क्या बात है इन गीतों की बहार बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को, माला सिन्हा की। इतनी प्यारी प्यारी फिल्में हैं ना, उनमें से बहुत सारे गीत इस हफ्ते शामिल नहीं हुए और मैंने सोचा कि फ़ायदा उठाना चाहिए इस बात का, और मैं दो गीत और शामिल करने वाली हूँ इन्हीं की फिल्मों के। वेल, प्यासा में इनका काम बहुत ज़बरदस्त था, धूल का फूल एंड फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह, बहुरानी, जहानारा, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो अगला गीत भी मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। बता दूं कि बहारें फिर भी आएंगी का ये गाना लास्ट हमारे यहाँ से 25th of February 2026 को प्ले हुआ था और इतने महीने बाद आज सरिता ने प्ले किया है और उम्मीद करती हूँ आपने ज़रूर इन्जॉय किया।
1: Leica. Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.
0: Another beautiful song. Film ka naam tha Sanjog aur is film mein bhi heroine thi Mala Sinha. लता जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत, आशा है आपको पसंद आएगा।

0: ऐसे गीत सदाबहार गीत हैं और ऐसे ही गीत आप विंटेज गोल्ड में सुनते हैं और आज भी आप विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सुन पाएंगे। अभिषेक के साथ सैंडी शाह नॉर्मली ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं और ये बता दूं कि ये गाना आप तक किसने पहुंचाया?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Ye hai Laika Radio. Laika
0: और जरा सरीता आपको ये भी बता दे कि 20th सीजन बिग बॉस का शुरू हो रहा है आज ही रात से एंड होस्टेड बाय सलमान खान। द शो इज एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार फ्रॉम दिस संडे यानी आज से 6th of September एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार विल स्ट्रीम every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: Another beautiful song. Aur ye bhi maine chuna hai Mala Sinha ki hi film se. कौन सा गीत है? फिल्म का नाम था आसरा, याद है आपको?

0: लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मैंने चुना था फिल्म फकीरा से, और इसे शामिल करने का एक रीज़न ये भी था कि आज ही के दिन 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी एंड शशि कपूर एंड शबाना आज़मी ने इस फिल्म में काम किया था, सीपी दीक्षित ने इसे डायरेक्ट किया था, रविंद्र जैन जी ने इस फिल्म के सारे गाने भी लिखे थे और म्यूज़िक भी उन्हीं का था। उम्मीद करती हूँ गीत को आपने थरली इंजॉय किया। जो मेरे साथ ही अभी जुड़े हैं थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से हमेशा अपने होने का एहसास दिलाया करें। वजाहत आप भी अभी अभी आए हैं, अमिता जी, महेंद्र बरजारिया जी, थैंक यू, निक गज्जर जी, रानी ऑफ सलाव, देश राज बसन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो लास्ट टोरंटो में सुन रही है मीना लखानी, थैंक यू।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम, ग्रैब योर कोको बोल टुडे।
0: ऐसी और भी गीत हैं दो तीन, वेल और जो फिल्में आज ही के दिन रिलीज हुई उनके नाम है फिर वही दिल लाया हूँ, 6th of September 1963 में रिलीज हुई थी, शिकार इन 1968, आज ही के दिन बेपनाह आल्सो इन 1985 एंड 1985 में ही तवाइफ, ये फिल्में रिलीज हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा फिर वही दिल लाया हूँ का गीत सुनाऊँ या फिल्म शिकार का, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठ, ये गाना सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, तब तक मैं ये काम कर लूं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, आप अगर पैसे भेजना चाहते हैं LemFi के जरिए तो आज आपको एक पाउंड के बदले मिलेगा इंडियन रुपीज 127.73, अफगान अफगानीज 87.11, पाकिस्तानी रुपीज 375.1 एंड बांग्लादेशी टका 166.13, श्रीलंकन रुपी 443.56 एंड US डॉलर्स 1.35.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is Leica Radio.
0: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 105 pounds and 35 pence का, सिर्फ और सिर्फ 1 gram सोना।
1: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
3: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m, Leica Gold and Leica Radio Midlands.
1: This is Leica Radio.
0: जी हाँ, आप जहाँ भी बैठे सुन रहे हो, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा साथ जो 3 घंटे तक दिया, अपना अमूल्य समय मुझ तक पहुँचाया, मुझसे शेयर किया, उसके लिए तह दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। और ये बता दें कि मेरा आपका साथ सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एंड संडे होता है, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। इस दौरान मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपका भरपूर मनोरंजन कर पाऊँ, आपको एंटरटेन कर पाऊँ और आपकी कुछ यादें ताज़ा करा पाऊँ जो आपने पीछे छोड़ दी थी। और जब उन गीतों को आप सुनते हैं तो नेचुरली याद आता है वो समय जब किसी के साथ हमने बिताया था। आपकी भी कोई ऐसी यादें हों और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक मेरा साथ देने के लिए पहुंच जाइएगा। हाँ, इस वेंसडे को 9th of September को मैं बाली जी का शो करने के लिए यहाँ आ रही हूँ। बाली जी छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो कहने मुझे कहा गया है कि उनकी जगह इस हॉट सीट पर मैं बैठ जाऊँ, तो आऊँगी मैं आपकी सेवा में वेंसडे 9th of September। वैसे मेरे बाद अभी यहाँ आ रहे हैं अभिषेक, who will be sitting in for Sandy Shah. और Vintage Gold में आपको जबरदस्त पुराने पुराने गीत सुनाएंगे. उसके बाद हमारी Gold Nights होती हैं, Overnight Service, वो भी गाने बहुत खूबसूरत होते हैं. मैं आपको जिस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ वो फिल्म शिकार से है और ये फिल्म भी आज ही के दिन 1968 में रिलीज हुई थी. मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम वेंसडे 9th को. मेरे बाद मैनचेस्टर में होंगे कौन जैसी और दूसरी जगह लाइका रेडियो पर आप सुन पाएंगे नीरज को. मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel. Your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises and soul-enriching yatras. We've got it all. Call Citybond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: We're finally going home for the wedding.
6: I know, I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
7: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
6: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
7: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
6: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
7: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
8: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
10: Is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11, 11.
11: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
1: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
2: Dubai is the place. 11,
1: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting.
3: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 8574 8410।
5: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली।
7: It's back and it's bigger.
8: Leica Radio presents the Leicester Diwali Shopping Festival, powered by Ram Jewelers.
7: On Sunday, 1st November 2026 at the Ram Garia Centre.
8: For sponsorship and store bookings, contact Jack on 07803 240580 or visit diwalishoppingfestival.co.uk.
7: Exclusive charity partner, Go Dharmic.
9: Punjab, the biggest tunes.

0: Radio.
1: Time for another Like a Love Classic.
2: Huh?
3: No.
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

0: मिस्टर फेल्कन कैश एंड कैरी फेस्टिव शॉपिंग का परफेक्ट डेस्टिनेशन। राखी और गणेश आइडल्स अब अवेलेबल हैं सभी फेल्कन स्टोर्स पर। ओनम संध्या के लिए प्री बुकिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। फेल्कन स्नैक्स 300 ग्राम्स की फुल रेंज सिर्फ £1.99 ईच। मुस्तफा देहरादूनी राइस 20 पाउंड्स सिर्फ 13.49। सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम्स सिर्फ 1.99 ईच या 2 for £2.99। टिल्डा ग्रैंड बासमती 20 केजी सिर्फ 29.96। एस मोतीराम नमकीन अब सिर्फ 9 रुपीस से शुरू और हर्ज़मैन बटर घी 20 kg सिर्फ 10.99।
1: फाल्कन कैश एंड कैरी 82A साइज 10 स्ट्रीट वेस्ट लिस्टर LE12JU एंड 2A रोल आउट सेल लिस्टर LE54UN।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
4: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 02023736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
5: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: बिग बॉस में इस बार मिलेगा बरदान और एक्स्ट्रा जीवन दान।
7: बिग बॉस सीजन 20 एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वॉच अ लाइव फीड फ्रॉम द बिग बॉस हाउस एक्सक्लूसिवली ऑन जियो हॉटस्टार।
8: लाइक अ रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान।
9: You know how fans shout at football matches?
10: Oh, wake up!
9: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to.
8: Did you know you can advertise on this station? Leica Radio Midlands, plus our other offerings. Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales@leicamedia.co.uk. Easing you through the night with the Midlands' biggest Asian hits on Leica Radio.

0: head.
1: Leica Radio.
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सीइंग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC.
6: The greatest Asian love songs across the Leica Radio Network.